मान्य सदस्यहरू, अब विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका मान्य सभापति कृष्ण प्रसाद पौडेललाई मधेस प्रदेशमा खानेपानी सरसफाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन 2083 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु।